मंजिल की वो तेरी मंजिल की तस्वीर बन जाऊंगी। मंजिल का पास है, मिलने की याद है, तू क्यों उदास है।

प्यारी प्यारी मगन मीठी मीठी चुभन प्यारी प्यारी तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए मुहब्बत से।

0: राम के मन में सीता का ध्यान,
1: प्राणों की आरती जलाई है जलाई है।
2: आज राम जन्म की बधाई है, बधाई है। आज राम जन्म की बधाई है।

है तुम आज किसी के हो जाओगे मुझे मालूमा अब न सताओ रे आओ रे आओ रे आओ आओ रे मुझे मालूमा अब न सताओ रे।